0: केसरी
1: तिम्रो गाला को तिल जहां से मेरो दिल
0: वेल एवरीवन फाइनल रिहर्सल 1 2 3 स्टार्ट

0: So we had a really good first day on the Saturday last weekend. लेकिन बहुत तेजी से बारिश होने लगी थी तो पहला दिन कोल्ड ऑफ हो गया था तो इनिंग्स के ब्रेक में हमने दो तीन इंटरव्यू लिए थे तो चले आए सुनते हैं
1: जतिन भाई बारिश हो गई है
2: जी बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है अनएक्सपेक्टेड था हम खेलने के लिए तो रेडी हैं लेकिन इक्विपमेंट गीली हो रही है
1: कैसा लग रहा है वहाँ पे पिच पे कैसी गेम है
2: गेम अच्छी जा रही थी सो फार सो गुड कोई ज़्यादा अच्छा स्कोर हो गया 8 over 47-48 सो एवरीथिंग गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू अवर प्लान बट इट्स ऑल गुड बट द रेन इज़ टू हैवी एट द मोमेंट सो वी जस्ट वेट एंड वॉच लेट्स सी हाउ इट गोज़ इन द नेक्स्ट 10-20 minutes एंड वी कैरी ऑन
1: ठीक है अब तो मुश्किल ही लग रहा है बारिश बहुत तेज़ आ रही है
2: जी वही चक्कर है कि बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और किसी को बॉल लग भी सकती है ये एक फ्रेंडली मैच है दोनों नेशंस के बीच में इसमें कोई कंपटीशन वाली तो बात नहीं है तो फॉर द सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स वी वेट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स देन वी फिगर इट आउट
1: ठीक है भाई थैंक यू भाई
2: ठीक है डॉक्टर साहब थैंक यू
1: शाहनवाज भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने कैसे थे कंडीशन पिच पे
3: पिच ओवरऑल ड्राई थी कंडीशंस और बॉल भी न्यू बॉल मूव हो रहा था बट जो आउटफील्ड थी वो थोड़ा वेट था जिसकी वजह से थोड़ा हमें बॉल को ड्राई करना पड़ रहा था बार बार बट ओवरऑल देयर वाज नो मतलब कि पिच स्लिप नहीं हो रहा था बॉल ग्रिप कर रहा था और सीम भी हो रहा था
1: अभी तो स्कोर हुआ है ऑलमोस्ट 2 for 7, 3 for 30 or 4 for 30 in 8 overs for 2 और आपने कितने विकेट लिए
3: दोनों मैंने लिए विकेट्स जी
1: और एक तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी जो बॉल्ड की थी उसके बारे में बताएं भाई
3: मेरा शुरू से यही था जो उनका मेन बैटर था उसके अगेंस्ट स्टांस यही था कि उसको मैंने इन स्विंग लाना है यार्क तो पहले दो बॉल मैंने किए बट वो मिडिल स्टंप से मैंने कोशिश किया लेकिन वो लेग पे वाइड चले गए और तीसरा बॉल जो किया वो फुल टॉस चला गया चौथा बॉल जो मेरा एग्जैक्ट जो मैं ट्राई कर रहा था वो सीधा इन स्विंग यार्क हुआ और वो सीधा उसके लेग स्टंप उसने उड़ा दिया
1: बहुत अच्छा आपने कंपोजर भी रखा और अपने ओवर को सही कंट्रोल रखा था बहुत अच्छी बॉलिंग की वेल डन भाई
3: थैंक यू सो मच शुक्रिया
1: ओके गगन भाई अभी हम क्रिकेट के लिए आए हैं तो आप हमें बताएं भाई ये क्रिकेट मैच क्या हो रहा है कौन खेल रहा है और स्पॉन्सरशिप के बारे में बताएं
4: ठीक है हेलो यहाँ पर आज हम खेल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे कम्युनिटी क्रिकेट और इसको हम मल्टी कल्चर कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रही है और हमारे कुछ कम्युनिटी पार्टनर्स भी हैं जैसे एलिस स्प्रिंग टाउन काउंसिल नो मोर बुलबर्थ और एलिस टाइगर्स क्रिकेट क्लब और हमने सोचा था कि आज मैच बढ़िया होगा काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं सेलिब्रेट करने के लिए और मैच देखने के लिए मगर बारिश का डिफरेंट प्लान है बारिश हो रही है तो बाद में अभी 8 ओवर हुए हैं और मैच बीच में रुका हुआ है लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैच आज नहीं हो पाएगा
1: काफ़ी तेज़ी से बारिश हो गई थी और बारिश रुकने से पहले स्कोर था 3 for 44 और पाकिस्तान वालों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बैटिंग काफ़ी टफ लग रही थी
4: हाँ तो क्योंकि सुबह भी थोड़ी बारिश हुई थी तो पिच थोड़ी सी मॉइस्चर था पिच में इसलिए बॉल बहुत स्विंग और स्किड हो रही थी तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान साइड को हुआ है और वो डेफिनेटली दे बॉलिंग गुड एज वेल तो 3 wickets गए हुए हैं 44 runs एंड 8 overs
1: अच्छी टॉस सी जीतने की इब्तियाज भाई की तो उन्होंने बॉलिंग सेलेक्ट की थी और अच्छा डिसीजन लिया था और अभी डिसाइड कर रहे हैं कि अभी क्या करना है अभी 3 बज गए हैं और 3 बजे के बाद इन्होंने डिसीजन बनाना है और या आज शुरू करेंगे या कल खेलेंगे अभी आपको पता है कोई डिसीजन बनाए
4: अंपायर ने 3 बजे का टाइम दिया था तो वो पिच इंस्पेक्शन करके तो डिसाइड करेंगे अभी बात चल रही है लग रहा है कि पिच में तो बारिश ज़्यादा होने की वजह से पिच गीली है तो इसलिए थोड़ी सेफ नहीं है बॉलर्स और बैट्समैन के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैच कल होगा कल कंटिन्यू और अभी देखते हैं 5-10 minutes में हमें पता चल जाएगा
0: All right. It was 3 o'clock on Saturday afternoon and the game was called off. Let's hear what the umpires had to say at the end of the first day.
1: Sir, how's it out there in the middle?
5: Yeah, it was like we are not expecting this much rain and this is now it's heavier so we have stopped the game. if it will continue like this, we will start fresh tomorrow again.
1: Right. It's looking tough to get out there again. How was it for you umpiring out there?
6: Oh, it was fine. The weather wasn't that bad, but you can see it coming in. Like, the ball actually held up really well, but yeah, it's coming. You can just see it coming. There's no clear in it when you look out to the west.
1: Yeah, good safe decision, a bit risky out there, and looks like the ball was coming on quite skidding as well to the bat. The batsman was struggling a little bit, but a good decision to get out and get out of the rain.
5: Yeah, we don't want to take any risk, and we don't want to get injured all our players, because we have reserve tomorrow, so we will first start tomorrow again. All right.
0: Okay, before we end the first day, we had a few words from one of the sponsors, the No More organization, Gaurav Gimri, representing there. He had a few words to say. Let's hear what he has to say and how the No More organization sponsors community events.
1: Okay, we have Gaurav Bhai here. Gaurav Bhai is representing the No More, is it foundation group?
7: Yeah, No More is a domestic violence campaign against violence against women and children. Was founded back in 2006, I believe, by Dr. Charlie King. He's one of the founder, and he's been running the successful campaign for the past so many years, over 20, 25 years. And it's all about coming together as a group in terms of footy players, cricket players, any sort of sport that we can link up with, and then coming up with a solution and saying there's no room for violence in our society, in our community, and there has to be a cycle break by somebody, you know. So that's the program we're running here in Central Australia. And I am a No More community engagement worker based in Central Australia, and I traveled remote communities like Fings, Santa Teresa, Tichikala, Yindumi, and other places. And it's all about putting the message out there for people saying that there's no room for violence in our home. In
1: a sporting event, so ye bhi aapne sponsor kiya hai, to sponsor ke saath aapne kya kya prove kiya hai?
7: स्पॉन्सर के साथ हम साथ साथ में मिल के काम करते हम लिंक अप आर्म करते ये इसका मतलब है कि वी स्टैंड स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस एंड स्पॉन्सरशिप में हम थोड़ा कुछ करते इफ दे नीड मर्चेंडाइज और एनी अदर थिंग लाइक यू नो ग्रोसरी अदर थिंग दैट वी आल्सो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ कमिंग टुगेदर. It's a collaborative project between the sporting club and No More, and putting up a message out there for wider society.
1: Ho gaya but community spirit phir bhi hai, har koi dekhne ke liye bhi aa raha hai aur har taraf smiles nazar aa rahi hai.
7: Ha, yehi wahi na, ye bahut sare log ikatthe hoke game khelna, respect on and off the field, ye sab baatcheet karna, isse bahut positive message jata hai bahar society mein, communities mein, wo bahut maine rakhta hai hamare society ke liye.
0: Okay, that was the end of the first day. We returned the next day on Sunday afternoon. We have the first interview with Sunny. Sunny had just lost his wicket, and he's going to tell us about how it was in the middle for him. The Indian team was doing really well by this point. They'd made roughly 160 runs with only a few wickets gone. And we decided to mix it up a little bit here. We introduced Punjabi, which is another language of our region, both spoken in India and Pakistan. So here's the interview in a bit of a mixed language.
1: Chalo bhai, innings hi end aa rahi hai, pehli innings hi.
8: Te
1: tusa kal to wapas aake aaj kafi achhi game khedi hai. Te tusi hale unhi wapas aaye ho, pitch to pitch kaisi thi?
8: ਭਾਜੀ ਪਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਕਿੱਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਗਈ ਪਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਨੋਇਸਲੀ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਵੀ ਪਲੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਲੇ ਸਿੰਗਲਸ ਡਬਲਸ ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਕਮਸ ਟੂ ਦੀ ਬੈਟ ਉਸ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਫਿਰ ਖੇਲਾ ਤੋ ਆਈ ਮੇਡ 40 ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਜਤਿਨ ਅਭੀ ਵੀ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 50 I think this is two over all right against Kebad, I think. So, for any Katam.
1: Ajay bhai, bahuti khulle sa khel rahe hain. Unko koi instruction mili hui hai.
8: Umda player hai, usne bola tha party uski taraf se hai. So, hum waise hi khel rahe hain, party leni hai usse.
1: ठीक है भाई, अभी गेम एंड होती है तो फिर और बात करते हैं।
8: हाँ जी भाई, ठीक, शुक्रिया।
0: All right, that was the last interview we did. And here to end off the game, we've got a final match presentation with the two captains, the organisers, and a couple of words from some of the sponsors, as well as Gagan Bhai, who presents the Punjabi show on Friday afternoons. Okay. मुझे स्कोर तो नहीं याद, बट इंडियन टीम ने सही मारा पाकिस्तानी टीम को, तो इंडियन टीम ऑलमोस्ट 180 रन्स बनाए थे उन्होंने, और हमारी टीम पाकिस्तान ने 100 बनाए होंगे तो हम लकी होंगे, बट काफ़ी अच्छी गेम रही थी फिर भी। और सुनते हैं
8: It's so good. Like Miska is always here to support the multicultural communities, and they are really helpful with all the food and with that cricket balls and any kind of sports. Like especially the newcomers in town, if they need any support with the any kind of like finding house, finding job, they can help you. Like any kind of sport, come there. This one stop shop. But if they can't help you, but still they can give you directions where to go. So yeah, yes, use the services, and they have Facebook page, Miska Alice Spring. Follow the page, and any kind of events coming up. So yeah, so you can get the update from there. Yeah. So office is near to the Anzac Oval. So they are really helpful all the time.
2: Thank you very Thank much. You. Now I will call my second sponsor, Gaurav. So Gaurav is the community engagement officer from No More Organization.
7: All right. Thank you, everybody. And India versus Pakistan is probably the biggest rivalry in cricket pitch. But today and yesterday, we saw a spirit coming together between India and Pakistan. And it was more of an unity. You know, playing the best way possible we can from both team, and still have that positive energy, positive attitude towards the respect on and off the pitch, and coming together as one team. Or well, as Alice Spring, India versus Pakistan was a massive one. Congratulations to the winning team, and we look forward to doing a partnership in the future, in the coming game as well. So best of luck to both of the team. Thank you.
2: Now 50. captain of Team Pakistan, very good sportsman spirit. Nah. He was having some issues regarding the match, overs, this, that, but he resolved very nicely. So thank you.
7: Thank you everyone for coming here today. We all came here for cricket, so obviously we all love the game. End of the day, it's the cricket that brings us together. And thank you to all those who showed up today, support both the teams from both sides. It's never about when we move to another country, it's never about, you know, that who is Indian or Pakistani. We all come together, we play the cricket, we play the game. It's a hard luck. It's always going to be one team who wins, the other one lose. We're on this side today. We would be on the next one. We're going to come stronger. Thank you, everyone, for showing up, for putting all the efforts. Really appreciate that. And pretty good game from this side on the... from the Blues. Very good. Thank you, Sukman, for all. I appreciate all the support and everything. And yeah, it was a nice game. We enjoyed both Saturday and Sunday. Hopefully we'll do better in next year.
2: Thank you very much. Now over to captain of winning team, Sukman.
8: Thanks. First of all, thanks to the weather. We have a full game today, and yesterday it was fucking dripping. And yeah, we have a couple of up and downs yesterday, like those guys was, but it was end of the day, game of cricket is win. Thanks to my boys, they just supported me yesterday for the decision, like we continue wherever we left. Thank you. Thanks everyone. So we played good cricket, you guys give us a tough fight. Like yesterday we were nearly like very back foot, we wasn't even know, like Ajay and Sunny and Jatin, they played good innings. You guys have good bowlers, and thanks to our bowlers too, Pant, Sunny. So yeah.
0: Okay, bhai aur behno, that was the end of our show. Thank you for everyone involved. Bahut maza aaya hame dekhne ke liye bhi, aur umeed hai player ko bhi bahut hi maza aaya hoga. Aur ab hum apna show finish karne wale hain. Ye suniye aap gana Anar Kali, which is a very topical song to end the show. It was a love story and the creation of one of the beautiful

0: तेरा चेहरा फिर अगर मैं देख लूं बस एक बार कर शुक्र करते करते बाकी जिंदगी को 200 साल
1: गुजर गए। पंजाब सिखों के कब्जे में चला गया और बदनसीब अनारकली का मजार शहजादा खड़क सिंह की रिहाइशगाह बना दिया गया। 50 साल यूं गुजरे और फिर अंग्रेज आ पहुंचे। इबादत के लिए जगह अच्छी लगी सो गुंबद में सलीब गाड़ी और सारी इमारत चूने से ढक दी। 40 साल तक मजार हैलेलुया से गूंजता रहा। फिर सलीब तो उतर गई लेकिन मजार को दफ्तरी फाइलों से लाद दिया गया। अब तमाम दिन इसमें फोन की घंटियां गूंजती हैं और क्लर्क शोर मचाते हैं। फिर शाम होती है और सारा मजार इश्क की रोशनी में नहा जाता है। लेकिन ये मंजर